मेरा साथ 8 बजे तक है। जी हाँ, आप मुझे सुनते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, हफ्ते के 5 दिन रोजाना। तो ह्यूस्टन वालों ने आज जो है वो वेदर को बड़ा एंजॉय किया और बड़ा अजीब मिक्सा वेदर है। एकदम से ऐसी बारिश हुई है जबरदस्त किस्म की कि बस कुछ भी नजर नहीं आ रहा था रोड पे, और उसके कुछ ही देर के बाद ऐसा सूरज था कि फिर सब कुछ नजर आ रहा था। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ कम्युनिकेशन गैप के हवाले से कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो क्यों होता है, किस तरह क्रिएट होता है, उसके ऊपर हमने बात की और किस तरीके से इसको जो है वो हम फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है, ये भी मैंने अभी रिसेंटली किया कि आप अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि यार बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई है, दोनों तरफ से बिल्कुल खामोशी है, उस वाली पार्टी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी खामोशी है, तो अगर आप कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने तौर पे ये सोच रहे होते हैं हम कि यार मैं अगर करूँगा तो मैं बहुत हल्का हो जाऊँगा, या मैं जो है वो बहुत जो है ना वो मुझे लाइट लेगा कि यार इसने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की है, वो कहीं बहुत ऊंचा ना समझने लग जाए अपने आप को। तो मतलब ये वाली भी जो मसले होते हैं ना, इसको हम कहते हैं अजम्पशंस। क्या पता अगर वो पहल नहीं कर पा रहा तो यार आप कर लें पहल। तो इसकी एग्जांपल मैं हूं कि मैंने भी बहुत दफा ऐसे कई केसेस में होता है कि जिन लोगों से मेरा राबता कई अरसे से जो है वो नहीं हुआ, मैं उनसे बात कर रहा हूं और आजकल मैं ये कर रहा हूं, मैं वाकई में ये जो शो का फॉर्मेट तो बना लिया है आप लोगों के लिए, बातें तो मैं कर रहा हूं बड़ी बड़ी, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों के पीछे राज ये है कि ये चीज मैंने भी अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दी है। बहुत से ऐसे लोग जिनके साथ एक जमाने में हमारी बड़ी अच्छी एसोसिएशन होती है, हम जब इवन आप सेम मुल्क या सेम शहर में भी रह रहे हैं, आप कॉलेज में साथ थे और आपका उठना बैठना बिल्कुल, कहते हैं ना जीना मरना साथ था, लेकिन आज वो कहाँ हैं पता ही नहीं आपको। मतलब आप बस सिर्फ फेसबुक पर हैं उनके साथ, ऐड हुए हैं एक दूसरे के पास, आप उनको देख रहे हैं लेकिन खामोशी से देख रहे हैं। इवन कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि ना कॉमेंट करते हैं, ना लाइक कर रहे होते हैं आपकी पिक्चर पे, ना आपको मैसेज कर रहे होते हैं, बस वो हैं आपके फेसबुक पे जो है। तो आप जब सोचें यार क्या इनके साथ मेरा ऐसा रिश्ता था, क्या मेरा इनके साथ ऐसा रिलेशन था कि इतनी ज़्यादा जो है वो हमारे दरमियान खामोशी आ गई है कि अब हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते, बस जब बर्थडे आती है जो फेसबुक नोटिफिकेशन देता है कि आज इनकी बर्थडे है तो बस हम हैप्पी बर्थडे लिख के बात ख़त्म कर देते हैं। एक ज़माना था जब कभी हम उनके लिए केक लेके जाया करते थे, उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड लिखा करते थे, कोई फ्लावर्स लेके जाया करते थे, या कोई गेट टुगेदर प्लान करते थे, इतना कुछ करते थे यार हम जो है, और एक दूसरे के घरों पे आना जाना करते थे। तो आज ऐसा क्या हुआ है कि हमारे दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है? उसकी वजह ये है दोनों एक दूसरे को सोचते रहते हैं कि मैं क्यों पहल करूँ, वो कर ले तो बेहतर है। अब वो क्योंकि बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, बड़ा सुपीरियर हो गया है, हम ये समझ रहे होते हैं, तो यार मैं अगर उससे राबता करूंगा ना तो उसको ये लगेगा कि यार इसका कोई मतलब है, कोई गर्ज है, कोई काम है। और आप यकीन जानिए कई बार ऐसा हुआ कि मैंने भी जब किसी से बात करना शुरू की तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था कि यार मैंने इतने दिन से जब बात नहीं की तो ये सामने वाला बंदा सोचेगा कि आज ऐसा क्या हुआ है कि ये मुझसे जो है वो बात करना चाह रहा है, और आज इतने सालों बाद ये मुझसे बात कर रहा है, यकीनन अभी थोड़ी देर में काम बोलने वाला है, यकीनन या तो ये पैसे मांगेगा या फिर के ये कोई और फेवर मांगने वाला है। तो बाज़ दफ़ा रिप्लाई करते हुए इंसान बड़ा डर भी रहा होता है कि यार अब मैं बात इससे शुरू करूंगा, ये इसने बात इनिशिएट की है, कोई तो भाई इसके पीछे रीज़न है इसने जो बात शुरू की है। तो आप ये मत सोचें, मैंने भी अब ये सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं मैसेज करता हूँ, मैं कहता हूँ सामने वाले ने जो सोचना है सोचे, क्योंकि मुझे उसकी याद आ रही थी और हमने एक अच्छा टाइम साथ गुजारा है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, तो मैं तो भाई मैसेज करूंगा कि यार, और मैं लिखूंगा कि बहुत दिन हो गए हमारी बात नहीं हुई है, हमारा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि खैर खैरियत पूछ लूँ, हाउ इज़ एवरीवन एट होम, ये सारी बातें जो है मैंने करके मैसेज कर दिया। अब यकीन करें कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप आहिस्ता आहिस्ता उस कम्युनिकेशन को दोबारा से जो है वो बहाल करने की कोशिश कीजिए। यकीन जानिए आप ज़हनी तौर पे ना एक ऐसा सुकून मिलेगा और आपको बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ मिल गया, मैंने कुछ हासिल कर लिया, कुछ अचीव कर लिया है मैंने। तो ये जो फीलिंग होती है इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की, ये एक ट्रिक मैंने अब जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, बड़ी कामयाबी मिली है भाई इसमें मुझे, आप भी कीजिए, यकीन जानिए कामयाबी मिलेगी। वो कहते हैं ना डॉक्टर अफाका होगा।

क्या गाना मुझे मिला, मेरे सामने आया इस वक्त जो है इस मौके पे, कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है। तो बेसिकली ये ओएसटी है जिसको अली जफर ने गाया है, ओरिजिनल साउंड ट्रैक फ्रॉम आपकी इज्जत।

जब तू याद आए चैन चुराए, जी हाँ वो भी कम्युनिकेशन गैप की बात हो रही है जो टॉपिक आज रखा है। तो उस पर जब गाना मेरे सामने आया तो मुझे फिर ख्याल आया कि पिछला पूरा वीक जो है वो इस ड्रामे के जो सीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल रहे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहे, और क्रेडिट गोज़ टू द परफॉर्मर्स जो कि इस ड्रामे में हैं और जिन्होंने बनाया है उनको क्रेडिट जाता है कि इतना अच्छा टॉपिक इसके ऊपर जो है वो बात की और बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ वायरल हुई है। और मैंने सोशल मीडिया खोला जब ये एपिसोड एयर हुआ, उसके बाद हर जगह सिर्फ और सिर्फ उरवा हुसैन की तारीफें थीं और अहसन खान की तारीफें थीं और इस प्रोजेक्ट की तारीफें थीं, क्योंकि वो लिखा बहुत अच्छा गया, वो सीन बड़ा जो है वो था ही बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में। अब बड़ी अच्छी बात जो है वो जुड़ी है यहाँ पे आके। ये जो सीन है तकरीबन कोई होगा 10 मिनट का ये सीन होगा, बहुत लंबा सीन था, दो कैरेक्टर्स के दरमियान की ये कॉन्वर्जेशन है जिसके अंदर सारा मसला, सारी बात ही कम्युनिकेशन की थी कि कम्युनिकेशन अगर की तो वो बहुत बुरी की, वो बहुत ज़्यादा टॉन्ट से भरी हुई की, बहुत ज़्यादा गिले शिकवे किए, बहुत बुरा भला कहा। तो उस बारे में था कि आपको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए सामने वाले इंसान को। और यहाँ पर इस जो इन दो कैरेक्टर्स के दरमियान जो कि एक कपल दिखाया गया है, इनके दरमियान जो भी कॉन्वर्जेशन हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छी है। और इस गाने के अंदर भी यही बात हो रही है कि जब तू याद आए तो उनको मना लीजिए, उन रूठे हुए लोगों को जो कि आपसे रूट गए हैं, या फिर कि अगर नहीं भी रूठे लेकिन खामोशी हो चुकी है दोनों साइड से, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, तो इस कम्युनिकेशन को कीजिए ख़त्म, आज ही कीजिए, अभी मैसेज कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपने किसी ऐसे इंसान को मैसेज किया जिसके साथ आपका बहुत अरसे से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था और आपने उसे मैसेज किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिप्लाई ना आए, खुशी खुशी आपको सामने वाली पार्टी की तरफ से रिप्लाई आएगा और वो भी बड़े खुश हो जाएंगे वहाँ पे कि यार मेरे दोस्त ने मुझे याद किया है इतने दिन के बाद, मैंने भी आजकल यही काम शुरू कर दिया है, उन लोगों को मैं चुन चुन के निकाल रहा हूँ जिनके साथ कभी मेरी लाइफ का अच्छा वक्त गुजरा था, लेकिन अब बात ही नहीं होती और मुझे कोई रीज़न ही नहीं पता कि क्यों नहीं होती, बस एवं ही नहीं होती। तो बस उस जो एवं ही है उसको ख़त्म करना है और एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड जो है वो दोबारा से क्रिएट करना है।

0: पक्की बात है,
1: पक्की बात है।
2: माफ कर जे तू समझे गलत।
1: जी हाँ बिल्कुल पक्की बात है। हम बात कर रहे हैं आज कम्युनिकेशन गैप के हवाले से। सुन रहे हैं आप आसिम अजहर की आवाज में तू है वही, और इनका लेटेस्ट एक सॉन्ग आया था। आसिम अजहर के गाने बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं, और अच्छी बात यह है कि अच्छे गाने आ रहे होते हैं, और आप कभी भी आसिम अजहर के म्यूजिक से डिसअपॉइंट नहीं होते कि यार ये गाना मजे का नहीं है, ये गाना बस ऐसे ही जो है वो बस इसने निकाल दिया है, रिलीज कर दिया है, ऐसा नहीं होता। तो ये गाना भी जब आया बहुत ज्यादा वायरल हुआ, और बहुत ज्यादा इस पर रील्स बनना शुरू हुई, बड़े टिकटॉकर्स ने इसके ऊपर, बहुत सेलिब्रिटीज ने इसको शेयर किया, और इसकी यूनिक बात यह है कि पुराने गाने की एक सिर्फ लाइन उन्होंने निकाली है और उसके ऊपर इन्होंने इस पूरे गाने को जो है वो अपने बनाया है, और जो कि बड़ी क्रिएटिविटी है, बड़े और बड़े मज़े की क्रिएटिविटी है। गाने की बीट बड़ी अच्छी है, इसका टेम्पो, और ये ऐसा है कि वो बच्चे बच्चे को जो है ना वो ये गाना बड़ा पसंद आया है। तो आप सुन रहे थे आसिम अजहर की आवाज में ये सॉन्ग, जिसको स्पॉन्सर किया था अरवा यमनी कॉफी ने। इस सॉन्ग के बाद जाएंगे हम एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आके करेंगे आपसे और बहुत सी बातें। तो सुनते रहिए प्राइम टाइम विद आहद संगीत रेडियो पे।